काफिरों के गाते हिंग जनम दिन थे बैमी हूँ हंगुराम को गनीमा गे मुदालिबमु फहें एवरेंगे किबई एवरेंगे अम्बिंग गुस्फावा मीहुन एवरें रणुगे गुतगा हेद कुरिफद इच्छे त्यबैमी हूँ ए गनीमा इन देश अदि त्यबैमी हूँ एकलांग्यं ईमा विगंवा खलांगे खमगावा अल्लाह त्यबैमी हूँ तक्वा विरवाशे।

वाश हम अकशवरम एकमकुं त्यबामीहुं फिलंदुआ मरु दन्नाच फह ए मरु त्यबामीहुं ना बद्दल कुरान कं कशवरे दें त्यबामीहुं रद्दु कुरवा हुशी नुफेन न खंतकाय फेन न खंत दिन वडिगं वा रसखलांगे हजरतशे फह एरुं त्यबामीहुं कोंगुलुनु खंतगे खबर त्यबामीहुं नं एकलांगे अंगवानते।

काफिरों के गाते हिंग जनम दिन थे बैमी हूँ हंगुराम को गनीमा गे मुदालिबुमु फहें एवरेंगे किबें एवरेंगे अंबिंग गुत्फावा मीहुन एवरें रणुगे गुतगा हेद कुरिफद इच्च त्यबैमी हूँ ए गनीमा इन देश अदि त्यबैमी हूँ एकलांग्यं ईमा विगंवा खलांगे खमगावा अव्वाह त्यबैमी हूँ थकवा विरवाशे।

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडा हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: तिकु तुम हाउ द हाई रंगल लाए तिहं मुन्ना ऐ कही आहो हाल बला पे मुन्ना शकं कं को देन ना है दी मुन्ना वरा उपावे
3: मैं आरोकड़ी एक कड़ी तेरे स्नेट मैं दीनु क्या डो
4: मुसहफ़ों फिला वाले गुरुआं के में दस को दे मुसहफ़ों फिला वाले के मैं तुझे प्रोग्राम का किया वानी सूरतुल मायदा के सारी सावन आये तुम फ़शागें ये सूरत के फ़ंसास बनाया तुम नियल मुदरिसकी अलकारी अली वहीद अब्दुल रहमान दरवरुना की आयशत फ़ज़ीना हलीमत ज़हदा आदम रावदा मोहम्मद अदी मरियम नाही रशीद
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
6: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
5: मुसहफुन फिलावले मियादुगे मि प्रोग्राम गा कियावानी माईदा सूरतुगे 40 हवन आयतुम फशायगिन ए सूरतुगे 50 वन आयतुगे नियला मियादुगे प्रोग्राम अडोसा हुरिहा फरातकुम वेस सते का 16 वन सफहा हुलवागिन तिब्बेम के वरन ए देवगिन वाकमे मियादुगे फिलावले मे फुरतम मुदरिस कियादेन हुरिहा कुदिम सडो हंति बेति
7: अऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वैंडना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिकु दुं हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना सकां कंको देन ना है दी मुन्ना वरा उपावे
3: ಮೇಹರು ಕಡಿ ಮೆಂದ ಮುಗಾಲಿವೆ ದೇ ಚಹಿ ಮೀ ದೇನುಕೆ